0: KZSU Stanford.
1: Namaskar friends, this is KZSU Stanford 90.1 FM. I am Pranjali welcoming you to another exciting episode of Chai Time. Over the years, we have had the honor of introducing you to various art forms and renowned artists. But today's episode is truly special. We are diving into the magical world of Nautanki, a vibrant folk theatre tradition of North India. And who better to guide us than the living legend and preserver of this art form, Sangeet Natak Academy awardee, Padma Shri Pandit Ramdayal Sharma ji. Also with us today is his son, Professor Devendra Sharma, a prolific artist in his own right, and Shubhra Prakash, a familiar face on Chai Time and a renowned theatre artist from the Bay Area, now based in New York. तो साथियों बात होने वाली है नौटंकी की और हमारी किस्मत के ऐसे दिग्गज कलाकार आज स्टैनफर्ड स्टूडियो में आए हैं और खुद पंडित जी हमसे बातें करने वाले हैं तो बेशक आज की चाय कुछ ज़्यादा ही मीठी होने वाली है तो तैयार रहिए हम मिलते हैं ब्रेक के बाद
2: KZSU Zootopia is our robot-curated music service that takes over when our live DJs aren't available. Like a self-driving car, Zootopia operates with no human at the controls. Zootopia now streams epic tracks from thousands of our DJs' most played albums over nearly the past two decades, so you can enjoy the best of college radio KZSU style. Check out our live playlist at kzsu.rocks. Zootopia, truly the Bay Area's coolest college radio on KZSU.
1: Welcome back, साथियों. फिर से एक बार आपका स्वागत है. This is KZSU Stanford. You are listening to Chai Time, and I'm your host, प्रांजलि. और आज हम बातें करने वाले हैं नौटंकी की. नौटंकी उत्तर भारत की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है जो कहानी, संगीत, नृत्य और नाटकीय अभिनय का अनूठा संगम है. रंग बिरंगे परिधान, भव्य मंच और प्रभावशाली प्रस्तुतियां इसे और भी जीवंत बनाती हैं. इसके विषय इतिहास, पौराणिक कथाओं और सामाजिक मुद्दों से प्रेरित होते हैं. सबसे पहले शुक्रिया शुभ्रा प्रकाश का और इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज बर्कली का कि जिनकी वजह से मैं जुड़ पाई पंडित रामदयाल शर्मा जी और उनके बेटे प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी से. तो हम बातें करते हैं, शुरुआत करते हैं पंडित जी से. पंडित जी, मेरा स्टैनफर्ड स्टूडियो का, हम सबका ये भाग्य है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ. कैसे हैं आप?
3: सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे. और प्रांजलि जी, आपका FM जो रेडियो है उसके लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद.
1: बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका. और बातें तो आपसे बहुत करनी है, पर मैं अपने सुनने वालों को पहले आपसे मिलवा दूं. तो साथियों, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार विजेता पद्मश्री पंडित

0: रामदयाल शर्मा जी भारतीय लोक कला के ऐसे महान फनकार हैं जिन्होंने स्वांग, भगत, नौटंकी, रसिया, रासलीला जैसी परंपराओं को जीवित और प्रासंगिक बनाए रखा है। वो एक कुशल गायक, कथावाचक, संगीतकार, अभिनेता, शिक्षक, लेखक और निर्देशक हैं। लिविंग लेजेंड पंडित जी स्वामी खेड़ा घराने के गुरु हैं और उनकी प्रस्तुतियों ने संगीत नाटक अकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और साहित्य कला परिषद जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में अपनी छाप छोड़ी है। तो पंडित जी, आपसे सवाल तो बहुत है क्योंकि आपने इतनी लंबी एक यात्रा की है, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि छोटे से गांव में एक छोटा सा बालक, भले ही विरासत में ये सब गुण कला मिली है, लेकिन कैसे आपने इतने सारे फन आपने सीखे और उनमें ऐसी महारत हासिल की? क्या राज है, कैसा हुआ ये सब?
1: जी, मेरा सौभाग्य है जो कि ऐसे घराने में मेरा जन्म हुआ
0: जी,
1: जो कि परंपरा से चला आ रहा है कई पीढ़ियों से
0: जी।
1: और वहाँ गांव में ऐसी जगह गांव है मेरा जहाँ के कोई न सड़क थी, न कोई, न बिजली, पानी, कुछ नहीं
0: जी।
1: इस तरह से जो है तो वहीं कोशिश मेरी हुई शुरुआत में वहीं, लेकिन पहले से लगन ऐसी थी। स्कूल टूर्नामेंट्स वगैरह में उसमें जो है जाता था, खूब जब प्यार मिलता था, अवार्ड मिलते थे तो बड़ा खुश हो जाता, उसका जो है फिर आगे हौसला बढ़ता था
0: जी। तो शुरू से ही आपको सफलताएं मिलती रहीं
1: जी जी।
0: तो हमने बात की स्वांग, भगत, नौटंकी, रसिया, रासलीला, तो ये सारी हमारी जमीन से जुड़ी परंपराएं, इनमें अंतर क्या है?
1: हाँ, जैसे कि रासलीला है
0: जी,
1: वो शुद्ध रूप से धार्मिक कृष्ण लीलाओं के ऊपर आधारित होता है
0: जी।
1: श्री कृष्ण के संबंधित जो भी लीलाएं हैं, इसमें रास और लीला अलग अलग है नाम वैसे
0: जी जी।
1: रास शुरुआत में उसमें नृत्य होता है, कथक से मिलता जुलता भी है वो।
0: अच्छा।
1: लेकिन पारंपरिक है, बहुत पुराना। तो नृत्य होता है, रास नृत्य है वो
0: जी।
1: और उसके बाद में लीला, मतलब जो श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं की हैं, जो उनकी कहानियां हैं वो उसमें समावित, जैसे कृष्ण सुदामा है, उद्धव गोपी संवाद है
0: जी।
1: इस तरह का जो है वो लिया जाता है। रास लीला दोनों का मिला हुआ नाम है रास लीला
0: जी। और स्वांग यानी स्वांग भरना जो हम कहते हैं आम बोलचाल में
1: जी जी जी, स्वांग से भी पहले भगत नाम है।
0: हाँ,
1: शुद्ध रूप से धार्मिक भगत है
0: जी।
1: तो बहुत विस्तार है इन चीजों का बोलने के लिए।
0: तो इसमें पौराणिक कथाएं,
1: पौराणिक कथाएं होती हैं और उसमें अधिकतर जो उसमें अभिनय का इतना ज्यादा वो नहीं होता है, गायकी का वो होता है उसमें।
0: अच्छा,
1: कविता का होता है उसमें
0: जी।
1: शुद्ध कविता लिखी जाती है ताजा, और फिर उसी को गवाया जाता है अच्छे अच्छे कलाकारों से।
0: अच्छा।
1: तो वो है भगत। उसके बाद में स्वांग में और भी चीजें शामिल, जैसे कि श्रृंगार रस भी शामिल हो गया, ऐतिहासिक भी।
0: अच्छा,
1: और जो कहानियां हैं वो उसमें स्वांग में सब आ जाती हैं
0: जी।
1: और इनका स्वांग का सबका मिला रूप जो है सांगीत है इसका नाम,
0: सांगीत।
1: जैसे कि भरतनाट्यम के जो इसमें उसमें सॉरी भरत के नाट्य शास्त्र में
0: जी, जी।
1: जो जिक्र है सांगीतक, हाँ, तो इसमें का थोड़ा सा हट गया है, तो संगीत वो
0: जी,
1: वही
0: जी।
1: परंपरा पुरानी चली आ रही है
0: जी।
1: जितने भी हमारी लोक विधाएं हैं, लोक नाट्य हैं, सब में वही परंपरा चली आ रही है, उनको सहेज के रखा है इन लोक नाट्यों ने
0: जी। और नौटंकी में ये सारी चीजों का, इन सारी चीजों का समावेश
1: जी। हाँ जी, हाँ,
0: कह सकते हैं।
1: उसमें असल में स्वांग ही था नाम पहले।
0: हाँ।
1: संगीत स्वांग, तो हमारे पुरखे भी जाया करते थे कानपुर, लखनऊ वगैरह।
0: अच्छा।
1: तो हम उसको पहले बोलते थे परदेश जाना।
0: अच्छा,
1: बहुत
0: अच्छा।
1: परदेश था वो हमारे लिए पहले।
0: हाँ, हाँ।
1: आज का समय तो बड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, हमारे लिए वो परदेश था
0: जी।
1: तो वहाँ कई कई महीने के लिए जाते थे और गांव, शहर सभी जगह वो वहाँ किया करते थे उसको। तो उसमें क्या है कि वो वहाँ के पारसी थिएटर वाले भी थे
0: जी,
1: वो सोचते थे कि ये रासलीला वाले रहस्यधारी आते हैं और अपना स्वांग करते हैं, इतनी पब्लिक आती है इनके लिए
0: जी,
1: तो हमें भी कुछ थोड़ा सा। तो उन्होंने क्या है, स्वांग की जितनी भी धुन है
0: जी जी,
1: गायकी, वो सब उन्होंने ली और अपना पारसी थिएटर स्टाइल में जो है डायलॉग्स वो शामिल कर लिए। तो उसमें क्या है, जितने भी पारसी थिएटर वाले थे सब जो उन्होंने इसी के ऊपर वो किया फोकस, और इतना अच्छा रूप निकल के आया है। बेस वही है स्वांग,
0: हाँ, हाँ।
1: कुछ नया नहीं है, इसके अलावा कोई धुन भी नहीं है उनकी, कुछ नहीं है। तो उसमें जो है उसको फिर वो पॉपुलर होने लगे
0: जी।
1: और उसमें एक नौटंकी जो स्क्रिप्ट है
0: जी।
1: बड़ा मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि अभी डॉक्टर देवेंद्र जो है उसको कर रहे हैं यहाँ पर
0: जी। मैं वही कहने वाली थी, आपने बात की परदेश की और देखिए आपके बेटे देवेंद्र जी परदेश लेकर आ गए ये कला, है ना। तो यहाँ मैं देवेंद्र जी आपसे रुख करना चाहूंगी
2: जी।
0: और आपने अपने पिताजी से सीखा
2: जी।
0: और अक्सर हम कहते हैं ना कि बड़े से पर जो बरगद का पेड़ है उसमें कई बार नए पौधे पनप नहीं पाते, ठीक है। लेकिन इतना प्रोलिफिक इनका व्यक्तित्व, ऐसा विराट व्यक्तित्व, ऐसे इतने ये बड़े कलाकार, और फिर भी आपने निडर होकर इस कला को सीखा, और सीखा ही नहीं आप उसको एक नई जमीन पर ले आए, एक विदेशी धरती पर लेके आए, जिसके लिए बहुत मेहनत लगती है ना। और आपको वो नौटंकी की आत्मा जो है भारत की, उससे भी जुड़े रहना है और एक नई जमीन में इसको अलग तरह का परिवेश में इसको बढ़ाना है। तो इस संतुलन के बारे में, संघर्ष के बारे में बताइए हमें
2: जी। आपने बड़ा ही समझदारी भरा ये प्रश्न पूछा है, बिकॉज हर एक कोई इस तरह का जानकारी नहीं रखता है। तो धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। इसमें यह है कि चूंकि मैं गांव में पैदा हुआ, छप्पर के नीचे दाई ने पैदा करवाया हमारे सामई गांव में, लेकिन फिर क्योंकि बाबूजी दिल्ली आए तो उनके साथ साथ मैं भी दिल्ली आया। एक राष्ट्रीय रिपर्टरी बनी, शांता गांधी उसकी डायरेक्टर थी और हम लोग दिल्ली आए। और जब मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, स्कूल्स में गया, तो मैंने देखा और उसे दुखी भी हुआ कि हम लोग, क्योंकि नौटंकी और स्वांग और संगीत इतने अच्छे हमारे संगीतक हैं, म्यूजिकल्स हैं, उनको देखते हुए बड़ा हुआ, गाते हुए बड़ा हुआ। और जब मैंने देखा कि शहर में लोग जानते ही नहीं हैं, और जानते हैं तो उनकी बड़ी भ्रमपूर्ण जानकारी है
0: जी।
2: कि शायद ये चीप डांस नंबर्स हैं या नौटंकी का मतलब ये होता है भोंडापन, तो मुझे बड़ा दुख होता था क्योंकि नौटंकी तो ओपेरा है, पूरा संगीतक है, गा के डायलॉग बोले जाते हैं
0: जी।
2: और इसमें आपको बताऊं तो इतने सारे छंद हैं, जैसे कि दोहा, चौबोला, दौड़, शिकस्त, लावनी, लंगड़ी लावनी, कलिंगड़ा, रेखता, कव्वाली, और मैं बोलता ही चला जाऊंगा। तो कम से कम 3 दर्जन छंद हैं इसके अंदर, जिसको शायर लोग, कवि लोग नाप नाप के सिलेबल्स को रख रख के पूरे एक साल में पूरे दल बनाता है। अच्छा। तो मुझे बड़ी इसको इतनी अच्छी लगती थी, गाता भी था, तो मैं बड़ा हुआ था तो एक शोभ के साथ, एक दुख के साथ, फिर लोग जानते नहीं है इसको, खासतौर पे शहरी लोग। फिर ऐसा भाग्य भी हुआ कि भारत में तो करता ही था, फिर मैं जब यहाँ PhD करने आया और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में सिनेमा स्कूल में मैंने डिग्री करी डायरेक्शन की
0: जी,
2: फिल्म में
0: जी।
2: तो फिर धीरे मैंने सोचा कि मुझे नौटंकी यहाँ भी करनी चाहिए, संगीत यहाँ करना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा है, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगा
0: जी, बिल्कुल।
2: तो यहाँ पे मैंने दल बनाया, उन सबको शिक्षित किया, और फिर बे एरिया के लोगों ने मुझे स्वागत किया बहुत, बड़े अच्छे लोग हैं। और फिर हमने मिलकर लगभग 50 लोगों को मैंने ट्रेन किया, और जब मैंने ट्रेन किया तो उनमें बड़ी एक जागृति सी आ गई, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं था कि हमारा भी ओपेरा है भारत
0: जी,
2: में
0: जी।
2: तो ये बड़ा अच्छा रहा। और फिर कुछ अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बुलाया, ऑक्सफोर्ड में और सोएस में, और फ्रांस में थिएटर दू सोले ने बुलाया, तो फ्रेंच एक्टर से हमने नौटंकी करवाई।
0: अच्छा।
2: और उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि फ्रेंच में ट्रांसलेट करते हैं, मैंने कहा कि डायलॉग आप बोलिए बीच में, लेकिन गाना हिंदी और उर्दू में ही होगा, क्योंकि जैसे इटालियन ओपेरा होता है तो उसकी तो हम लैंग्वेज चेंज नहीं करते।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो ऐसे उन्होंने किया, तो धीरे धीरे सब जगह फैल गई।
0: हाँ,
2: और कैलिफोर्निया में खासतौर पे बे एरिया में चूंकि गुड़ ग्राहक लोग हैं
0: जी,
2: तो उन्होंने बड़ा इसको लाइक किया, तो इस तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया
0: जी। तो इन गुण ग्राहक श्रोताओं को हम एक बार आपका परिचय भी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 2002 डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, अ नौटंकी artist, singer, writer, director, and performance scholar introduced Nautanki to America. His productions bring together engineers, doctors, local theater artists, and members of the Indian diaspora, offering them a unique chance to reconnect with their roots while also introducing Indian culture to diverse communities across the globe. He is a professor of communication and performance at California State University, Fresno, and a seventh generation artist of Swang, Nautanki, and Raslila with over 1,000 global performances and numerous films and TV programs to his credit. और ऐसे इतने इतनी सारी चीज़ें आपने की हैं देवेंद्र जी, और आप ऐसे हंसते बोलते अच्छे हमारे स्टूडियो में चले आए, बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ हमने बात की कि जैसे लोकल आर्टिस्ट से आप लेते हैं, और ये सारे लोग हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, साथ ही कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पले बढ़े हैं. मैंने आपकी बेटी को सुना मतलब दादाजी और पोती जी स्टेज पर साथ साथ परफॉर्मेंस कर रहे थे यूसी बर्कली में. तो ये जो ट्रेनिंग होती है, आपने जैसे बताया आपने दल बनाया, फिर आप लोकल आर्टिस्ट भी लेते हैं, और ये गाने तो बड़े पारंपरिक है जो आप लोगों ने गाए, तो कैसे किस तरह से तालीम दी जाती है?
2: हाँ, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, क्योंकि नौटंकी और स्वांग की गायकी जो है बहुत ऊंचे तार सप्तक पे होती है.
0: बिल्कुल. हाँ,
2: और उसमें भी पंचम और धैवत में तार सप्तक के, यानी कि ए शार्प में गाई जाती है, तो बहुत मुश्किल है. और शुरू में तो ऐसा लगता था जो भी लोकल गाने वाले हैं हमारे एरिया में कि हम तो नहीं गा पाएंगे इसको, तो हथियार डाल देते थे. लेकिन बाबूजी हमारे पंडित रामदयाल शर्मा जी से मैंने सीखा बचपन से ही
0: जी,
2: क्योंकि ये किसी को भी गवा देते थे.
0: अच्छा,
2: हाँ, बड़े अच्छी टेक्निक. और वो टेक्निक मैंने इनसे सीखी
0: जी,
2: और उसी टेक्निक को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि किस तरीके से अपनी आवाज को खोला जाए, किस तरीके से अपने पर कॉन्फिडेंस लाया जाए
0: जी,
2: और किस तरीके से ज्यादा सुना जाए. तो आपने देखा होगा बच्चे हमारे कॉलेज के जो हैं हमेशा हेडफोन लगा के घूमते हैं.
0: हाँ.
2: तो अपने आप मुंह से गाना निकलता है वो
0: जी.
2: तो लिसनिंग इज सिंगिंग इन सम वेज.
0: आई सी.
2: तो मैंने इनसे बोला देखो रिकॉर्ड करो, मेरा रिकॉर्ड कर लो, उसको सुनते रहो.
0: अच्छा.
2: फिर उनका अरे ये तो कमाल हो गया, दो तीन दिन बाद आने लग गई वो धुन. तो इस तरीके से बहुत सी तकनीक हमने इस्तेमाल करी
0: जी.
2: और क्योंकि शास्त्रीय संगीत को तो जानते हैं लोग, उसे एक्सपोज्ड हैं.
0: हाँ.
2: लेकिन शास्त्रीय संगीत और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में आप एक राग में ही घूमते हैं. जैसे अगर आप एक राग गाना शुरू करते हैं तो राग से बाहर नहीं जाते
0: जी.
2: इसमें चूंकि ये ऐसी विधा है जो शहरों गांवों में सबसे लोकप्रिय थी और हमारा ओपेरा है, तो उसमें कव्वाली भी आ गई, इसमें रेखता भी आ गया, इसमें दोहा भी आ गया, चौपाई भी आ गई. और कब धुन कहां चली जाए ये राग पे निर्भर, राग भी हैं. तो इसमें थोड़ा सा ये जरूर था कि हमें ये बताना पड़ता था कि देखो राग में ही सीमित नहीं रहना है, इस धुन को समझो आप. कभी किसी राग में जा रही है, कभी किसी राग में जा रही है, कभी किसी राग में जा रही है
0: जी.
2: तो ये सारी चैलेंजेस थे, लेकिन फिर इन्होंने पकड़ लिया उसको लोगों ने, और बड़ा इनको उसको प्यार किया नौटंकी को. तो अब ऐसा है कि अगर मैं कहता हूँ नौटंकी करनी है तो आए जाते हैं लोग, हम भी करेंगे.
0: बिल्कुल. और मुझे वही लग रहा है कि अब मैं यही शुरू करने वाली हूँ, मैं सुनने वाली हूँ बहुत. और मैंने सोचा था कि ये बातचीत हम करेंगे तो मेरे सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन सीखने तो मुझे ही मिल रहा है. कितनी चीजें हम नहीं जान पाते ना, हम स्टेज पे नौटंकी देखते हैं, हमें लगता है अच्छा अच्छे से गाना आना चाहिए, लेकिन ये जो आपने बात कही शास्त्रीय संगीत और लोक नाट लोक कला में जो अंतर है.
2: और आप अब गाना शुरू करिए, हमारे साथ गाइए नौटंकी.
0: बिल्कुल. तो गाने की बात हुई, तालीम की बात हुई, तो हमारी एक यहाँ की अदाकारा हैं शुभ्रा प्रकाश जी, तो हम उनसे भी बातें करते हैं और उनसे भी पूछते हैं. तो हम अमेरिका में पल रही आधुनिक युवा पीढ़ी की बात करें तो एक शख्सियत, एक कलाकार मेरे दिल के बहुत करीब है, शुभ्रा प्रकाश. अपने मशहूर चाचा फॉन्ट डिज़ाइनर, कैलीग्राफर, टाइपोग्राफर श्री राजीव प्रकाश फॉन्ट वाला के साथ वो पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं. शुभ्रा प्रकाश इज़ एन एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर एंड शॉर्ट फिल्म मेकर. शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बे एरिया एंड नाउ लिव्स इन न्यूयॉर्क. शुभ्रा, वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप?
3: नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में दोबारा आने में.
0: जी, और देखिए सबसे पहले मेरे छोटे भाई करण मिश्र ने आपसे मिलवाया, फिर आपने पंडित जी और देवेंद्र जी से मिलवाया, तो बस ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप कैसे जुड़ी नौटंकी से और कब से जुड़ी हुई हैं?
3: 2008 में यहाँ पे जो ग्रुप है नाटक,
0: अच्छा
3: नाटक का ऑडिशन कॉल आया था नौटंकी के लिए.
0: अच्छा अच्छा.
3: और तो वो पहला प्रोग्राम था जिसके ऑडिशन के लिए मैं गई थी, और मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि नौटंकी के लिए क्या गाना चाहिए ऑडिशन में.
0: अच्छा.
3: उन्होंने कहा तुम आर यू श्योर कि ये नौटंकी हो रही है, क्योंकि नौटंकी जो होती है वो बहुत मुश्किल है गाना, और नौटंकी जो होती है जो उन्होंने देखी थी लखनऊ में
0: जी,
3: और उत्तर प्रदेश की और जगहों में जहाँ वो रहे हैं
0: जी,
3: अपने परिवार के साथ, और मेरी बुआ ने भी देखी, मेरे और चाचाओं ने भी देखी है नौटंकी
0: जी.
3: तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि हम बेरिया में यहाँ कौन नौटंकी कर रहा है, तुम पहले ये देखो कि वो क्या नौटंकी है, तो मैंने जब पता लगाया तो मैंने उनसे कहा कि ये सुल्ताना डाकू नाम की नौटंकी है.
0: अच्छा.
3: तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा, तो तुम इसमें ऐसा करना, एक फिल्म बताएंगे उसमें एक गाना है तीसरी कसम जो नौटंकी के ऊपर है.
0: बिल्कुल.
3: और उससे थोड़ा मतलब मिलती जुलती है. तो मैंने कहा अच्छा. तो उन्होंने कहा तुम उसमें से एक गाना गाना,
0: पिंजरे वाली मुनिया.
3: नहीं, उन्होंने मुझे बोला पान खाए सही
0: है हमारा.
3: तो मैंने तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. मैं तो मैंने कहा अच्छा गाना है, मुझे गाना बहुत पसंद है. तो मैंने गाना जितना भी हो सका खुद से सीखा और मैंने जाके गा दिया ऑडिशन में, और वहाँ से पूरा सिलसिला शुरू हुआ. फिर मैंने उसमें भी पार्ट्स किए
0: जी,
3: और उसमें मैंने डाकू के भी पार्ट किए, सुमरना डाकू और मुनीम का पार्ट.
0: अच्छा, अच्छा.
3: मैं फीमेल का कोई रोल नहीं किया मैंने, और अच्छा. मुझे बहुत मज़ा आया
0: जी,
3: क्योंकि मुझे एक्टिंग में और गाना गाने में तो बहुत मज़ा आता है, और नौटंकी ने मुझे वो एक ऐसा अवसर दिया
0: जी
3: ताकि मैं उसको पूरी तरह से कर सकूं.
0: तो आप पहले से संगीत जानती थी, लेकिन नौटंकी का संगीत भी आपने अलग से फिर सीखा?
3: बिल्कुल अलग है,
0: क्योंकि और बहुत अलग है
3: ना? और इतना अच्छा है क्योंकि हाँ. उसमें अलग अलग तरीके की चीजें आपको सीखने को मिलती हैं.
0: बिल्कुल.
3: और हमें जिन लोगों से सीखने को मिल रही हैं, जैसे प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा और उनके पिताजी पंडित रामदयाल शर्मा से, जो कि पद्मश्री सम्मानित है, उनसे सीखने को मिल रहा है.
0: तो हमें आप में वो एक इंस्टीट्यूशन है,
3: मतलब हम तो यहाँ बैठ के हमें कैसे मिल रहा है, यही मुझे बहुत बड़ी चीज लगती है
0: जी. और पंडित जी के साथ काम करने का ये पहला मौका होगा ना?
3: जी, हमने NSD में भारंगम में एक शो किया था, और तब मैंने उनके साथ सबसे पहली बार काम किया था, और तब मुझे सबसे पहली बार नकारे की आवाज सुनने को मिली थी उस रिहर्सल में वहाँ पे.
0: अच्छा अच्छा.
3: तो फिर मुझे लगा कि अच्छा अब हम यहाँ गाएंगे इन सब के साथ, जो इनके और भी कलाकार हैं जो सालों से नौटंकी गा रहे हैं. तो मुझे लगा कि अच्छा अब कुछ सीखने को मिलेगा.
0: तो पंडित जी सीखा इन लोगों ने, आप क्या कहेंगे? आपने तो आपकी इतनी लंबी यात्रा रही है, और उस समय से लेकर ये हमारे आजकल के बच्चे हैं, तो आप क्या कहते हैं, आपका कैसा अनुभव रहा इन सबके साथ काम करने का, इनको सिखाने का?
1: जी, बहुत ही अच्छा. और मेरी इच्छा भी यही थी कि युवाओं में ये चीज जाए
0: जी,
1: जिससे कि इसकी जो गलत फहमियां है वो दूर हों, और इसकी जो असलियत है उसको जाने वो. हाँ, इसके जो बहुत दूसरे ढंग से उसको इस्तेमाल करते हैं लोग
0: जी.
1: लेकिन जब इन बच्चों ने सीखा तब इन्होंने जाना कि कितनी सुंदर विधा है.
0: बिल्कुल.
1: और थोड़ा सा मैं पहले थोड़ा सा रह गया वो
0: हाँ.
1: नौटंकी नाम इसलिए पड़ा कि एक नौटंकी स्क्रिप्ट जो देवेंद्र कर रहे हैं
0: जी जी,
1: तो वही इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी पॉपुलर हुई कि जहाँ भी जाते हैं कि भाई नौटंकी का खेल आ रहा है, नौटंकी आ रही है, नौटंकी का खेल आ रहा है. तो वो नौटंकी नाम इतना पॉपुलर हो गया, सॉन्ग की जगह उसको नौटंकी कहने लगे.
0: वही मैं पूछने ही वाली थी कि नौटंकी अक्सर हम कैसे कहते हैं किसी के व्यवहार को देख के, अरे वो नौटंकी कर रहा है. पर मुझे आप लोगों से पता चला कि नाम नौटंकी से फिर सारा कुछ सिलसिला शुरू हुआ.
1: जी जी. जो और भी प्रमाण है इसके, जैसे कि वो थोड़ा सा प्रमाण हम देते हैं, जैसे कि कोई भी वनस्पति घी लेने जाते हैं
0: जी,
1: तो उसको कहते हैं भाई डालडा देना. जबकि डालडा के अलावा और भी वनस्पति घी है
0: ब्रांड,
1: लेकिन ब्रांड जो है मशहूर हो गया.
0: तो शुभराम, मैंने तो आपको स्टेज पे नौटंकी करते देखा, और अभी हम तीनों इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को हम थोड़ी सी एक झलक सुनाते हैं, दिखा तो नहीं सकेंगे, तो हम एक छोटा सा रिकॉर्डिंग आपका जो भी है वो यहाँ पर प्ले करेंगे. और उनको एक अंदाज आएगा कि हम जिस संगीत की बात कर रहे हैं, जिस भाषा की बात कर रहे हैं, तो नौटंकी में ये सब कैसे होता है। और इसी छोटे से ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत हम फिर शुरू रखेंगे।
4: देख ले दुनिया की झलका ले, क्या माया है दुनिया की, कितनी रंग रंगीली माया है, और माया के अनेकों रूप हैं, बहुत रूप हैं, लेकिन आजकल माया का एक ही रूप सबसे बढ़कर है,

ऐसा पास होता है, बन जाते हैं बहुत साथी जब पैसा पास होता है। अरे टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता पास होता है। अरे है बनी बनी के सब साथी, है बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी का सहारा कोई नहीं। अरे धनो

करते रहो, उसको याद करते रहो और सब कुछ आ जाएगा। खाने और पहनने की बात है, जहां भी हमें खाने को मिलता है हम खा लेते हैं। और ये भी किसी ने दे दिए कपड़े, तो ये

0: पैसे बिन भाई कह मेरा दुखदाई है,
1: तो बाबूजी बता रहे थे वो कैसे नौटंकी ब्रांड बन गया।
2: हाँ, एक और दूसरा एग्जांपल है, बहुत करीबी है
1: जी,
2: वो कलाओं में ही है, लोक कला में है, जिसके विदेशिया है एक बिहार का।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो विदेशिया को ही अब विधा समझते हैं, जैसे कि नौटंकी की स्क्रिप्ट को ही विधा समझ लिया
1: जी।
2: ऐसे विदेशिया को, लेकिन विदेशिया जो है एक भाग है, लौंडा नाच एक विधा है
1: जी,
2: उसकी विधा का नाम असली नाम है लौंडा नाच। तो उसमें एक विदेशिया एक स्क्रिप्ट है।
1: अच्छा,
2: वो इतनी पॉपुलर हो गई विदेशिया के नाम से ही जानते हैं उसको
1: जी, जी।
2: लौंडा नाच से कोई नहीं जानता है,
1: तो वो नाम ही जो है वो पड़ जाते हैं।
2: ऐसे ही नौटंकी का,
1: अच्छा,
2: नौटंकी स्क्रिप्ट इतनी, जो इसे मैंने आपसे कहा था कि अभी जो देवेंद्र जो कर रहे हैं स्क्रिप्ट, वो इतनी पॉपुलर हुई तभी से नाम चेंज होना शुरू हो गया इसका
1: जी,
2: नौटंकी नौटंकी
1: जी। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया शहजादी नौटंकी, तो उसके कुछ अंश हम सुनते हैं
2: जी।
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत ही सुंदर और जो तालमेल की हम बात कर रहे हैं कि भाषा है, संगीत है, सबका अभिनय है, और एक अभिन्न अंग मुझे लगा देवेंद्र जी और पंडित जी, वो जो हम देख रहे थे नौटंकी की, दो माइक्स थे, आप बारी बारी से उसमें कह रहे थे, गा रहे थे, और एक साइड में आपके म्यूजिशियंस बैठे हुए थे, और नौटंकी की बात अधूरी है जब तक हम संगीत की अहमियत और संगीतकारों की हम बात ना करें। तो जब संगीत की बात आई है तो जाहिर है जिक्र होगा उस्ताद चुन्ना और उस्ताद चिदाराम जी का, जो हारमोनियम और नक्कारा की संगत से आपकी महफिल में चार चांद लगाते हैं। तो आप अपने साथी कलाकारों के बारे में और उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए।
1: जी जी जी, छिद्दा जी जो हैं, जो नकारा बजाते हैं,
0: जी
1: वो पारंपरिक कलाकार हैं, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे एक जगह है सीमा पे नगर,
0: अच्छा।
1: वहाँ पर जो है वो रहते हैं
0: जी,
1: और बाऊजी के साथ और दूसरे महान नौटंकी कलाकारों के साथ उन्होंने लगभग 60s से 60 के दशक से नगाड़ा बजाया है, और आजकल वो टॉप के नकारा प्लेयर हैं
0: जी।
1: तो बाऊजी हमारी मंडली में रहे हैं वो बहुत दिनों तक, तो कमाल का जो एकदम खालिस नौटंकी है, तो उसमें जैसे नगाड़ा बजता है उसमें कोई मिलावट नहीं है, वैसा बजाते हैं,
0: बिल्कुल शुद्ध देश
1: हमारा नकारा, उसको सुन के ही जाना जा सकता है। और चुन्ना जो हैं वो मुझसे छोटे हैं पर बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, और वो भी जो है वो हमारा पुन्हाना जो है, जो कि हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है,
0: अच्छा।
1: वहाँ पे बड़े अच्छे मेव इलाका है वो,
0: हाँ।
1: और वो उसमें वहाँ बड़े संगीत के और सांगीत के घराने हैं वहाँ पर भी
0: जी।
1: तो उसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के घराने हैं, तो इनके करीबन 5-6 भाई हैं ये, और उनमें कोई हारमोनियम बजाता है, कोई नक्कारा बजाता है, कोई कुछ और बजाता है, तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के ही घराने हैं ये, और उनके इनके जो बड़े भाई हैं हरी जी,
0: जी
1: और मटोल जी, वो बाऊजी के साथ पहले बजाया करते थे
0: जी।
1: अब जो है चुन्ना जी थोड़े बड़े हुए हैं
0: जी,
1: तो और दूसरे कुछ भाई रिटायर हो गए हैं,
0: अच्छा।
1: अब चुन्ना जी हमारे साथ हारमोनियम बजा रहे हैं
0: जी।
1: तो ये सब पारंपरिक कलाकार हैं और हमारे दल में शुरू से ही शामिल रहे हैं,
0: और अभी वो भारत से आपके साथ आए हैं,
1: बड़ी बड़ी मेहनत करी है हमने उनको लाने के लिए।
0: एक उनका भी नाम हमने जरूर लेना चाहिए जिनका वीजा नहीं हो पाया।
1: अरे हाँ, तो वही चुन्ना जी के बड़े भाई हैं वो,
0: अच्छा।
1: रशीद जी, और हाँ। वो हमारे दल में हमेशा बजाते रहे हैं, वो ढोलक बजाते हैं, और ढोलक बजाना भी एक कला है, हम लोग सोचते हैं कि ढोलक कैसी भी बजा लें, अब तो शादियों में भी ढोलक बजती है या वैसे, लेकिन ये ढोलक अलग है, इसका बजाने का स्टाइल नौटंकी का, अखाड़े का स्टाइल है, मतलब बिल्कुल कॉम्पिटिशन, बिल्कुल जबरदस्त, और नगाड़े के साथ मिलके जो ऐसी ध्वनि पैदा करते हैं दोनों मिलके के कोसों दूर, यानी कि माइल्स से लोग जो है सुनाई देता है, और जैसे नगाड़ा खनकता है शाम को, जैसे 10-11 बजे नकारा और ढोलक बजे,
0: हाँ।
1: तो दूर दूर के गांवों में 50-50 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर तक ना हिल जाते हैं लोग रेडियस में
0: था तब, हाँ, है ना?
1: कि अब शुरू हो गई
0: जी जी,
1: तो सब चल पड़ते थे अपने अपने गांवों से, आसपास के गांवों से जहां पे हो रही है या शहर में
0: जी,
1: और सब चल पड़ते थे, और उसके बाद फिर कलाकार जो गायक है
0: जी,
1: फिर उनका पदार्पण होता।
0: बिल्कुल, और यहाँ मैं पंडित जी से पूछना चाहूंगी कि नक्कारा बोलते ही हमको क्या याद आता है, नक्कार खाने में तूती की आवाज, कि नगाड़ा इतने जोर से बजता है, तो जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि नगाड़ा बज रहा है, ढोलक बज रही है, इतनी आवाजें, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, आपने बात की कि तब तो इतने बिजली माइक्रोफोन कुछ नहीं, लेकिन पंडित जी उस दिन यूसी बर्कली के स्टेज पर भी मैंने देखा कि आपकी जो बुलंद आवाज, आपका वो प्रेजेंस, मतलब आप जो शहंशाह बनकर आए ना, तो हम ही बिल्कुल सजदा करने खड़े हो गए। तो ये जो आवाज का जादू है, तो कैसे आप रियाज से मशक्कत, कैसे ये हो पाता था, कैसे सुनाई देती थी आपकी आवाज?
2: इसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी होती है शुरू में
0: जी,
2: क्योंकि अब मैं तो जब तो हल्का ही था, जब मेरा गला खराब हुआ, ऐसी उम्र आती है लड़के की जिसमें वो बचपन का गला ख़त्म होता है, दूसरा गला आता है, तो मैं एक तरह से रोता था कि ये क्या हो गया, लेकिन मैंने प्रैक्टिस रखी। मैं अपने खेतों में जाता था जंगल में
0: जी।
2: और वहाँ कुएं होते ना, कुआं, पहले जो है उसमें पानी होता था, तो कुएं के ऊपर जो है मुंह थोड़ा सा कुएं के अंदर लटका के,
0: हाँ।
2: जो ही गाते तो उसका ईको आता था ऊपर, तो उसको कर करके मैंने आवाज को खोला घड़े में मुंह दे करके घर में जब वो गाता था तो उससे जो आवाज खुली धीरे धीरे खुलती हुई चली गई। तो अब फिर ऐसा हुआ कि जो सबसे जो टॉप की जो मंडलियां थी वो ऑफर करने लगी।
0: अच्छा।
2: तो बड़ा प्यार मिला मुझे, पब्लिक का इतना प्यार मिला बहुत ज्यादा। तो इस तरह से अब स्टेज पर आते हैं कि दबंग हो करके गाते हैं तो उसी हिसाब से फिर नकारा बजता है। दबंग आवाज के लिए दबंग साज भी चाहिए ना।
0: हाँ, हाँ।
2: तो वही इसी तरह का हारमोनियम है
0: जी।
2: उसी तरह का जो है ज्यादा आवाज का
0: बिल्कुल
2: तो
0: बिल्कुल।
2: उससे जो है थोड़ा सा
0: और साज की बात आई तो बड़ा मध्यम क्लैरिनेट भी चल रहा था।
2: हाँ।
0: तो वो बताइए मुझे देवेंद्र
1: तो
0: जी।
1: इसमें ये है थोड़ा सा और बाबूजी की बात को ऐड करता हूँ पंडित जी की बात में
0: जी
1: कि बाबूजी तो बहुत थोड़ा बोल रहे हैं, बड़ा अभ्यास होता है। और पहले हमारे पास माइक्रोफोन नहीं थे इनके जमाने में। मेरे जमाने में तो माइक्रोफोन आ गए लेकिन इनके जमाने में माइक्रोफोन जब शुरू किया इन्होंने तो माइक्रोफोन नहीं थे। तो जो कोई भी कलाकार जो अपनी आवाज को थ्रो नहीं कर, ओपेरा है, अब आप वेस्टर्न ओपेरा भी देखें तो वो भी पूरा फुल थ्रोटेड होता है। तो ओपेरा हर जगह ऐसा ही है और वेस्टर्न ओपेरा तो फिर भी उसको सपोर्ट मिल जाती है क्योंकि प्रोसीनियम में होता है, एनक्लोज्ड स्पेस में होता है। हमारे संगीत स्वांग नौटंकी ये खुले स्पेसेस में होते हैं। तो आप सोचिए खुले में आवाज को बिना माइक्रोफोन के थ्रो करने के लिए कितनी पावर की जरूरत है।
0: वही वही मेरा सवाल था तो कि कितनी मेहनत
1: तो ये महीनों तक बाबूजी शो से पहले और बड़ा खान पान का ध्यान, कितना नींद लेनी है। तो मैं इसमें ऐड करना, इन्होंने तो 10% भी नहीं बताया है, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं और बड़े नियम से हैं, क्या खाना है क्या नहीं पीना है कुछ नहीं, बड़ा चाय तक नहीं पीते, ऐसे अपनी आवाज़ को रखते हैं। और सभी जो बड़े बड़े नौटंकी कलाकार हैं सबके अपने अपने यही तरीके हैं अपनी आवाज़ को ऊपर बुलंद करने के। तो ये मैं ऐड करना चाहता था। और क्लैरिनेट के बारे में ऐसा है कि कुछ वाद्य ऐसे रहे पहले, स्वांग और नौटंकी में पहले सारंगी बजती थी और कई बार पुरानी जो चंग है जो कि बड़ा सा गोल जो है परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है जो होली पे भी पहले बजा के उठा के गाते थे
0: जी।
1: तो वो पहले लावनी में बजती थी और नौटंकियों में भी उसका बोलबाला था लेकिन और फिर जो है पुराने किस्म का तबला भी बजता था कमर पे बांध के। लेकिन कुछ फिर वाद्य ऐसे अच्छे आए जैसे कि हारमोनियम। अब हारमोनियम की शुरुआत तो यूरोप में हुई है, इसको पहले पेरिस पेटी बोलते थे हम लोग क्योंकि पेरिस से आती थी ये। तो हारमोनियम जो भारतीय कलाकारों को कुछ वेस्टर्न वाद्य भी बड़े अच्छे लगे जैसे कि साउथ इंडिया कर्नाटक म्यूजिक में वायलिन को अडॉप्ट कर लिया है
0: जी।
1: उसी तरीके से हारमोनियम हमारा पुराना पेटी जो होती थी जिसमें पैरों से हवा दे के ऊपर से दोनों हाथों से बजाते थे उसको मराठी नाट्य संगीत में भी वो बजता है
0: जी।
1: तो वो शामिल कर लिया। और इसी प्रकार से क्लैरिनेट जो है 1950 के दशक में आते आते सबसे पहले रेडियो वालों ने शामिल किया इसको आप लोगों ने। तो ऑल इंडिया रेडियो में जब नौटंकी होती थी, बाबूजी की जो पहली नौटंकी है मथुरा रेडियो पे और जो हुई है रिकॉर्ड पहली बार वो 1967 में रिकॉर्ड हुई। बाबूजी हैं उसमें, बाबूजी गुरुजी हैं।
0: अच्छा।
1: अभी भी उसकी मेरे पास एक कॉपी मौजूद है।
0: हाँ।
1: तो उसमें भी क्लैरिनेट उसके बाद धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई रेडियो पे क्योंकि रेडियो पे बज रही थी क्लैरिनेट।
0: अच्छा।
1: तो असली शोज में तो कम बजती थी लेकिन रेडियो शोज में जब नौटंकी की रिकॉर्डिंग की जाती थी तो क्लैरिनेट बड़ा पसंद करते थे लोग क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो ह्यूमन वॉइस से काफ़ी मेल खाती है
0: जी।
1: तो फिर जब मैं सैन फ्रांसिस्को में आया तो हमें एलेन मिले
0: जी।
1: वो जैज म्यूजिशियन है और उन्होंने बड़ी इच्छा जताई कि मैं भी बजाऊंगा नौटंकी में। तो इस तरीके से हम क्लैरिनेट को लेके आए, वायलिन भी लेके आए। आपने उस शो में नहीं थी वायलिन जिसमें आपने देखा लेकिन सैन फ्रांसिस्को में लूचिया थॉमस करके हैं उन्होंने वायलिन बजाई बिल्कुल इंडियन स्टाइल में, नौटंकी स्टाइल में। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिपर्टुआर इसका बढ़े, इसके थोड़े से वाद्य भी बढ़े
0: जी। और यहाँ पर हम एक छोटा सा अंश और सुनेंगे आपकी, मैंने इतनी सारी अभी मैं लगातार वही सुनती आ रही हूँ तो हम दर्शक हमारे श्रोताओं को भी सुनाते हैं
1: जी।
0: और बातचीत हमारी आगे बढ़ाते हैं।

0: तो साथियों, हम बातें कर रहे हैं पंडित रामदयाल शर्मा जी से, प्रोफेसर देवेंद्र जी से, और हमें सीखने मिल रही हैं इतनी सारी चीज़ें. और हम देख रहे हैं कि इस कला में मेहनत है, इस कला में इतनी सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन साथ में ये केवल एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का साधन नहीं है, इसमें सामाजिक मुद्दों को भी उठाया जाता है, जो समय समय पे चीज़ें हो रही हैं. तो एक कलाकार का काम है समाज का जो दर्पण है, समाज को दर्पण दिखाने का. तो पंडित जी, तब से लेकर आज तक आपने इतने सारे शोज़ इतनी सारी जगहों पे किए हैं और अलग अलग मुद्दों पर आप करते आए हैं नौटंकी. और मैं तो आपके बारे में पढ़ रही थी, तो कितना आपका मतलब इतना वास्ट कैनवस है, हनुमान की रामायण से लेकर मतलब क्या क्या. तो मुझे इस बारे में बताइए कि कैसे आप विषय चुनते हैं और खुद लिखते हैं, कैसा है ये प्रोसेस कैसी है?
1: जी, पहले शुरुआत में तो हम वो पारंपरिक केवल वही करते थे
0: जी,
1: लेकिन समाज के हिसाब से जब मैंने सोचा तो वाकई कुछ जरूरत थी
0: जी,
1: इसलिए मैंने सबसे पहले तो एक तरह से टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए लिखी बेटी का ब्याह. हाँ, तो उसी का आगे रूप बनकर इतना हो गया, इतना चला, पॉपुलर भी हुआ. तो पूरी यूपी में एक बार
0: जी
1: हम ट्रेनिंग के लिए देने को गए थे, मैं और डॉक्टर देवेंद्र. तो जितने भी नाट्य मंडली हैं उत्तर प्रदेश की
0: जी,
1: तो सबको बुलाया था, उसको ट्रेंड किया.
0: हाँ.
1: उनके जाना जब फिर जब शो हुए नौटंकी उसके, तो बेटी का ब्याह उनमें मेन था.
0: अच्छा.
1: महकानी मुस्कानी, कई स्क्रिप्ट फिर मैंने लिखी इसमें, तो वो इतनी पॉपुलर कि 10,000 से ज्यादा गांवों में शो हुए उनके.
2: और अब जस्ट ऐड कर दूं मैं बाबूजी की बात पे, पंडित जी के बेटी का ब्याह दहेज पर है.
1: हाँ,
0: दहेज
2: की समस्या के ऊपर है. और महकानी मुस्कानी जो है औरतों की एम्पावरमेंट या उनके सशक्तिकरण पे है. बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है.
0: बहुत बढ़िया. और देवेंद्र जी, आपने भी यहाँ पर उसी सिलसिले में कुछ किया है ना?
2: जी, जी जी जी. मैं जब यहाँ आया तो एक बार मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार देख रहा था इंटरनेट पे.
0: हाँ.
2: तो वहाँ पे मैंने खबर पढ़ी कि हजारों वाइव्स, हजारों पत्नियां भारत में वेट कर रही हैं अपने NRI पतियों का.
0: जी.
2: तो वो लोग शादी हो जाती है और बहुत सारा दहेज भी लेते हैं और फिर आके जो है भूल जाते हैं कई बार उनको. तो उसके बहुत सारे कारण हैं. कई बार कल्चर क्लैश है, कई बार उनका कोई दूसरा पार्टनर होता था यहाँ पर, इस तरह से न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था. तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये कि इतनी बड़ी समस्या ये है और हजारों जो हैं ब्राइड्स जो हैं वो वेट कर रही हैं इंडिया में और वो नहीं ले जाते हैं. तो उसके ऊपर मैंने काउंटर पल्स एक यहाँ संस्था है सैन फ्रांसिस्को में
0: जी.
2: तो उनका एक परफॉर्मिंग डायस्पोरा प्रोग्राम होता है. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप जो है कुछ नौटंकी करिए. तो मैंने कहा मैं तो कुछ आधुनिक नौटंकी करेंगे.
0: अच्छा.
2: है ना. हाँ. पारंपरिक की बजाय. तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने एक कहानी लिखी इसके ऊपर, एक लिखी और उसका नाम रखा मिशन सुहानी, जैसे मिशन इम्पॉसिबल है. मैंने कहा कि नौटंकी को थोड़ा नया बनाते हैं
0: जी.
2: और उसमें यही था कि वो इम्पॉसिबल मिशन है सुहानी नाम की लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, पढ़ी लिखी लड़की है. वो क्लासिफाइड एड्स में या इंटरनेट एड्स से जो है शादी हुई
0: जी.
2: और उसके बाद जो दूल्हा आया खूब दहेज ली और लौट गया और फिर वापस लेने नहीं आया उसको. तो लेकिन सुहानी हर लड़की की तरह नहीं है. तो सुहानी जो है अपनी सहेली से संपर्क करती है जो खुद सैन फ्रांसिस्को में रहती है, NRI अच्छे NRI ग्रूम के साथ. अच्छे NRI भी होते हैं, सारे बुरे तो होते नहीं है. तो वो वहाँ आती है, फिर अपने पति को देखती है कि मर गया है कि जिंदा है, कहाँ है. वो देखती है उसके तो और कोई गर्लफ्रेंड है. तो सुहानी फिर जो है बड़ा मजा आता है, फिर उसी को पति जो उसी के पीछे पड़ जाता है क्योंकि वो पहचान तक नहीं पाता, क्योंकि वो शादी में घूंघट में थी, ज्यादा देखा नहीं
0: जी.
2: और भूल गया. और उसके बाद सुहानी उससे उससे पूरा अभिनय करती है कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे वापस अपना दहेज लेती है और फिर उसको तलाक दे देती है.
0: बहुत बढ़िया.
2: तो इसको मैं बाबूजी के पास लेके गया, पंडित जी के पास
0: जी.
2: कि आप ये कहानी जो है आपको कैसी लगती है. तो बाबूजी को बड़ी अच्छी लगी कि बढ़िया है, ये तो है, जैसे हमने बेटी का ब्याह किया, बहकानी मुस्कानी, ये भी आधुनिक समस्या पे है
0: जी.
2: तो बाबूजी ने इसको छंदों में पिरोया. तो असली जो फिर नौटंकी बनी, मैंने कहानी लिखी लेकिन असली नौटंकी बनी बाबूजी की लेखनी से.
0: जी, तो विषय है, कहानी है, पर उसे फिर छंदों में बांधना है।
2: ओपेरा तो बनाना था ना, तो कहानी तो एक ऐसी दूसरी कहानी। मेरे मित्र देवदत्त पटनायक हैं जो माइथोलॉजी लिखते हैं,
0: पर आधुनिक
2: माइथोलॉजी के साथ लिखते हैं, काफी मशहूर हो गए। तो देवदत्त जी और हमारी एक और मित्र हैं शैली सत्यू, और अपना ये कपूर जो अपने चलाते हैं पृथ्वी थिएटर्स, तो इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया एक नौटंकी डायरेक्ट करने के लिए। तो मैंने कहा कि हम लोग किस पे नौटंकी करें, तो देवदत्त ने कहा कि ये कहानी है बहुत अच्छी, पौराणिक कहानी है, लेकिन मैंने इसको अंग्रेजी में लिखी, छोटी सी बच्चों की कहानी है।
0: अच्छा।
2: हनुमान जी की रामायण, हनुमान की रामायण, जिसमें वाल्मीकि जी को बड़ा अच्छा लगता है कि हनुमान जी की अपनी पत्तों पे लिखी हुई, केलों के पत्तों पे रामायण लिखी है हनुमान जी ने अपने भक्ति भाव में।
0: जी।
2: तो वाल्मीकि जी लगता है वाह इतनी अच्छी रामायण, इनको पढ़ेंगे तो मुझे शायद लोग कम पढ़ें। तो हनुमान जी ने उन पत्तों को बटोर के खुद खा गए कि देखिए आपने तो, मैंने स्वांतः सुखाय लिखी थी तो वो तो मेरी रामायण मेरे अंदर चली गई है, और आपने परहित सुखाय लिखी है।
0: अच्छा।
2: दूसरों के भला करने के लिए, तो बड़ी अच्छी कहानी थी। तो बाबूजी से फिर मैंने कहा, मैंने उसको हिंदी में अनुवाद किया, देवदत्त ने अंग्रेजी में लिखी थी, तो मैंने बाबूजी ये कहानी कैसे लगती है आपको।
0: हाँ।
2: तो बाबूजी ने बड़े मन से उसको छंदों में फिर बांधा, और उसमें इतने छंद हैं, कमाल की वो बनी। उसके करीबन 125 शो हो चुके हैं, 125 शो, शुरुआत पृथ्वी थिएटर से हुई और फिर संजना कपूर और उनका जुनून जो थिएटर है वो बाहर भी ले गया, शैली सत्यू जो शमा जैदी और एम एस सत्यू की बेटी हैं वो भी ले गई इधर उधर, पूरे भारत में चला। तो बड़ा बड़ा फेमस हुआ वो हनुमान की रामायण। और मैंने अपनी नौटंकी जो किताब लिखी है ब्लूम्सबरी से, अभी नौटंकी द म्यूजिकल थिएटर ऑफ इंडिया,
0: जी
2: तो वो लंदन से छपी है, और उसमें पूरा एक पूरा पृष्ठ मैंने हनुमान की रामायण के मुख पृष्ठ को दिया है, बड़ी सुंदर है। देवदत्त ने उसका चित्र बनाया है क्योंकि वो चित्रकार भी हैं।
0: और ये अमेज़न पे
2: सब जगह अवेलेबल है, अमेज़न, बांस एंड नोबल्स, ब्लूम्सबरी, मैथुन ड्रामा, सब जगह अवेलेबल है। और ये किताब बड़े ही मैंने उसी आंगस्ट के साथ लिखी है जो कि मैं बड़ा हुआ और किस प्रकार से हम अपनी कलाओं को भूल रहे हैं
0: जी।
2: और अभी जो हमारी सारी दृष्टि विश्व की तरफ तो है, और बड़ी अच्छी बात है वो,
0: हाँ।
2: बाहर से सीखना
0: जी।
2: लेकिन साथ ही साथ जो हमारे आसपास जो चीजें हैं, जो अपनी चीजें हैं
0: जी,
2: उसको सहेज के रखें, उसमें एक्सपेरिमेंट करें। अब जैसे शेक्सपियर है, अब वो शेक्सपियर कभी उन्होंने इररिलेवेंट नहीं होने दिया, तो शेक्सपियर को बदल बदल के अलग अलग तरीके से समझ के वो नाटक करते रहे
0: जी।
2: तो हम संगीत स्वांग तो इतनी खुली विधा है कि हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं
0: जी।
2: तो उस तरह से लिखी है, और इससे अगर लोग पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल। और वैसे भी देवेंद्र जी, अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें और सीखना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं, आपका वेबसाइट?
2: जी मेरा है, वेबसाइट है devnautanki.com, देवेंद्र से देव बन गया तो devnautanki.com, और उसमें मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक भी है।
0: अच्छा।
2: और उसी के थ्रू मुझे मैसेज भी, ईमेल भी किए जा सकते हैं
0: जी।
2: तो कैसे बहुत दुनिया भर के लोग मुझसे संपर्क में रहते हैं
0: जी।
2: और तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं नौटंकी के बारे में, तो स्वागत है लोगों का, और आपके माध्यम से भी वो मुझसे जुड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल। और मुझे वही लगता है कि मतलब आज एक ये छोटी सी बातचीत से ही कितने सारे पृष्ठ खुल रहे हैं ना, तो ऐसी कितनी, और हमारी ये संस्कृति, हमारी ये कलाएं, इतना अगाध है ये हमारे पास खजाना।
2: जी बिल्कुल।
0: तो बस उसको एक एक करके हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारी कोशिश है। और आप तो इतनी मेहनत कर रहे हैं देवेंद्र जी, आपकी तो बहुत बहुत मतलब तारीफ है।
2: तब बाबू जी की कृपा है, पंडित जी की, पिताजी की
0: जी। तो बाबू जी, आपने तो मतलब इस कला को हर जगह आप लेकर गए, लेकिन किस्मत NSD की, आप तो वहाँ पढ़ाया है आपने ना?
1: जी।
0: तो वो कैसा रहा अनुभव, क्योंकि वो तो एक एकदम नया आयाम हो गया उनके लिए।
1: जी हाँ, नौटंकी में भी यहाँ मालूम पड़ा, जैसे रेडियो में मालूम पड़ा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, तो उन्होंने मुझे लपक लिया आज मेरा सौभाग्य है कि टॉप ग्रेड में हूँ रेडियो का, तो ऐसे ही वहाँ मालूम पड़ा NSD में कि पंडित जी खूब यहाँ आए हुए हैं
0: जी।
1: तो फिर उन्होंने बुलाया मेरे को
0: जी,
1: लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से।
0: अच्छा।
1: हाँ, शुरुआत हुई।
0: हाँ।
1: और जब ये लोग थर्ड ईयर में थे, ये अन्नू कपूर और रघुवीर यादव,
0: जी जी,
1: मैं फिर सेकंड ईयर को पढ़ाता था।
0: अच्छा।
1: हाँ, सेकंड ईयर को पढ़ाता, आगे चल के वो आशीष विद्यार्थी, हाँ ये भी बारुल इस्लाम और बहुत सारे लोग,
2: आशुतोष राणा,
1: आशुतोष राणा, हाँ ये जो सनसनी जो देते हैं वो तो वो सब मेरे अधिकतर, यानी शायद कोई भी फिल्म और टेलीविजन ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई सेशन ना हो मेरा
0: जी।
1: सीखा हो, सबसे नौटंकी गवाही मैंने, और आज भी इतनी इज्जत देते हैं वो नौटंकी के लिए
0: जी।
1: जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं
0: जी,
1: चाहे कितने भी अच्छे बड़े हो गए हों कलाकार वो, लेकिन उसको बड़ी इज्जत देते हैं, और मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि असली चीज़ मैं पहुँचा पा रहा हूँ युवकों में।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ भी NHD और आपने NHD को और भी ब्रांचेज हैं, बनारस में भी है, और जैसे कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है
0: जी,
1: बहुत कई जगहों पर, वहाँ बॉम्बे में भी है वहाँ, और
2: बॉम्बे यूनिवर्सिटी,
1: जी हाँ जी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, हाँ
0: वही। आपने बस स्वांता सुखाए खुद तक नहीं रखा, ये बहुत बड़ी बात है।
2: हाँ, जी, जी।
0: आपके बेटे भी इतने काबिल निकले और ये कला इतनी, मतलब आपने पीढ़ियों पीढ़ियों तक आगे, और मुझे देवेंद्र जी ऐसा लगता है कि हम इतिहास किताबों में ढूंढते हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए बाऊजी जैसे महान व्यक्तित्व के पास, कि जिनके पास इतिहास है
2: जी, जी, जी,
0: जो हमारे वर्तमान को अच्छा कर रहे हैं
2: जी, जी,
0: और जो हमें भविष्य से जोड़ रहे हैं
2: जी, जी, बिल्कुल।
0: तो मतलब इनसे हम सीखेंगे, किताबों से क्या।
2: बिल्कुल,
0: तो
2: मैं एक बड़ी अच्छी घटना बताता हूँ बाऊजी के बारे में, जिन्होंने नहीं बताई, वो किताब में मैंने मेंशन करी है कि पहले क्या होता था, इनका एक बार अपहरण हो गया
0: बाऊजी का।
2: हाँ, क्योंकि इनका, इनको अबडक्ट कर लिया लोगों ने, क्योंकि इतने मशहूर कलाकार और देखने में अभी भी बहुत सुंदर हैं, और उस वक्त तो आप जानते हैं जब जवानी बिल्कुल शुरुआत की जवानी और एकदम हीरो बनते थे,
0: अभी भी वो बहुत। मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन यूसी बर्कले में आप सब में सबसे हैंडसम बाबूजी लग रहे थे।
2: बिल्कुल स्टार है नौटंकी के,
0: तो
2: हाँ, और जैसे अमिताभ बच्चन के लिए भीड़ लग जाती है, तो मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था
0: जी,
2: तो किसी भी जगह शो होता था तो मुझे अपने पिताजी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इतनी भीड़ आसपास, और ऊपर से छतों से लोग देख रहे हैं, महिलाएं खासतौर पे छतों पे, क्योंकि वो आती नहीं नीचे, तो छतों पे चढ़ के देखते हैं कहाँ रामदयाल जी, कहाँ राम, अच्छा वो हैं रामदयाल जी।
0: अच्छा,
2: तो
0: अच्छा।
2: हम बच्चे थे तो हमें यहाँ तक पहुँचना, स्टार के पास पहुँचना मुश्किल हो जाता था
0: जी।
2: तो एक बार ऐसे ही गोकुल जो है जमुना जी के बगल में, जहाँ कृष्ण जी का जन्म स्थान है, गोकुल और महावन, तो वहाँ आपस में बड़ी राइवलरी थी दोनों गाँवों में, महावन जहाँ पे रसखान जी की समाधि है और गोकुल जहाँ पे जन्मस्थली है, तो वहाँ पे भगत और ये जो स्वांग जो हैं होते थे, और दोनों के अपने अपने अखाड़े थे, अखाड़े मतलब पोइट्स के, कविताओं के, तो हर एक चाहता था कि बाऊजी शामिल हों उसमें, कलाकार बने उसके, क्योंकि टॉप के कलाकार थे। तो एक बार ये महावन चले गए और बाय चांस गोकुल में बिजी हो गए थे, उस वक्त कुछ और काम था तो नहीं आ पाए, ऐसा नहीं है चाहते नहीं थे, तो गोकुल वालों को अखर गई बात। तो अगली बार किसी मेले में ये गोकुल में थे,
0: अच्छा।
2: तो लोगों ने घेर लिया,
0: हाँ।
2: कहा कि अब तो हम आपको ऐसे कैसे किया आपने कि महावन चलेगा और हमारे पास नहीं आया। तो अब महावन में उस वक्त शो होने वाला है, उन्होंने रोक लिया, अबडक्ट मतलब के इट वाज, ले गए कहीं जाके छुपा दिया,
0: हाँ।
2: और महावन वाले ढूंढ रहे हैं कि हीरो कहाँ है। तो ऐसे बड़ी बड़ी, इनको सिंदूर भी दिया पान में, जो कि अक्सर देते हैं लोग, और लेड होता है उसके अंदर,
0: वो तो आवाज गले पे असर पड़ता है।
2: तो महीनों तक बड़े रोए, बड़े बड़े मुश्किलों से निकाला वापस आवाज को। ये ऐसे बहुत सारे कलाकारों के साथ हुआ है ना, फिदा हुसैन पारसी थिएटर वाले, उनको भी दिया था
0: जी।
2: ऐसे ही मास्टर मदन को भी दिया, जो पहले गाया करते थे। तो जो भी कलाकार होते तो ईर्ष्या तो होती है, तो ऐसे ऐसे आप इतिहास की बात कर रही हैं, तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो कि मुझे पता है बाऊजी तो सब उस वक्त दिमाग में जो भी आ रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत चीजें इनमें भरी पड़ी।
0: और वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना, ना थमेगा ना रुकेगा, वैसे है बाबूजी का।
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी जो ऊर्जा वो हमें देते हैं,
0: बिल्कुल,
2: हमारी जनरेशन को, वो कमाल है। तो जब मैं थोड़ा सा निराश हो जाऊंगा या थक जाऊंगा कि अब ये कैसे करें, इस नए जमाने में अपनी कला को कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों तक पहुंचाएं, तो हमेशा वो मुझे उत्साह देते हैं अभी भी कि करते चलो
0: जी। और सबसे बड़ी बात कि इतना सारा अचीव करने के बाद भी पंडित जी आप मतलब जो आप में विनम्रता है और जैसे आपसे मिलकर लग रहा है कि जैसे बरसों से आपको हम जानते हैं और आप ही के घर के हैं, तो ये शायद मतलब कला तो भगवान के घर से आती है पर स्वभाव ऐसा बनाए रखना, प्रसिद्धि को, इतनी कामयाबी को, ऐसे हंस के इतने अच्छे से आगे, मतलब मैं तो एकदम नतमस्तक हूँ आज पंडित जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और समय का इशारा हो गया है, चाहती तो हूँ बस घंटों आपसे बातें करती रहूँ, लेकिन जाते जाते आप मुझसे, देवेंद्र जी से, शुभ्रा जी से, हमारे श्रोताओं से, आने वाले सभी जनरेशन से क्या कहना चाहेंगे?
1: मुझे बहुत खुशी हुई आपके आने से, और बड़ी खुशी हो रही है नए रूप में इसको, नौटंकी को आगे बढ़ाने में
0: जी।
1: और आपने कहा थोड़ा सा नम्रता तो होना ही चाहिए, कलाकार वही है
0: जी।
1: वो घमंड और कला का कोई संबंध नहीं होना चाहिए
0: जी।
1: हाँ, तो ये अच्छा है क्योंकि ईश्वर की कृपा है, उसको सहेज के रखना चाहिए, कर्तव्य अपना करना चाहिए
0: जी।
1: इसमें घमंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो आपका

0: रहे हैं, यही शुभकामना और यही प्रार्थना है
1: आपसे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारी संस्कृति कल्चर को इतने बड़े पैमाने पे इतने देशों में और इतने लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये है KZSU स्टैनफोर्ड 90.1 FM। मैं हूँ प्रांजलि और आप सुन रहे थे चाय टाइम, और चाय टाइम पर हम बातें कर रहे थे पंडित जी से, देवेंद्र जी से, शुभ्रा जी से, और उन्होंने जो कुछ हमें बताया, मैं काफ़ी सारा अपने ब्लॉग में भी लिखूंगी, आपसे शेयर करूंगी। साथ ही ये वाला एपिसोड और पुराने सारे एपिसोड्स आप सुन सकते हैं एप्पल प्ले पर और soundcloud.com/chaitimeradio पर, और इसी तरह हम मिलते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। यहीं पर मैं प्रांजलि आपसे अलविदा कहती हूँ, और फिर से आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।
2: KZSU Stanford.